的大姑娘嘛，有个嘞。तो तेहेगी मासे वे नितेंगा वे ओका तिन होती उर्ति ते मता सरवे को हो ये राधी ताप गेम्मा युगले एराशिर्मा की ताप गेम्मा युगले